संत संगंतर प्रवृठाना प्रभु काला गिठा स्वगल समग्री एक नाना दृष्टा है नौ न समर प्रभु का नाम दही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाय अचर्ज विस्माद तिन देखा जिसाब दिखाए नानक तेजन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रह भगवंत तरुण महे आकाश पयाल सर्वलोक पूरन प्रत्यय पाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसिया गया तैसा करम पौन पाणि व्यसन तरमाए चार कुण दिस समाए तिस्ते पैनने कोठां गुरु प्रसाद नानक सुख पाऊं वेद प्राण सिमरत में देख शशि और सुर नखत्र में एक बाणी प्रभु के सबको बोले आप डोलना कबू डोले सर्व करा कर खेल खेल मोल न पाई गुणो अमोल सर्व ज्योत मह जाके ज्योत धार स्वामी ओत पोत गुरप्रथा परम करना स्नान के दिन में ए विश्वास संत जना के बेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुन सब बचन संत जना सुन सब बचन सर्वव्यापी राम संग रचन जन जाता तिसकी रहत सच बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मान कर्ण करावन हार प्रभ जान अंतर बसै बार प्यो नानक दर्शन देख सब मोहि आप सद किया सब सत तिस प्रभ दे सुख लियो तो पत तिस पवे तकर विस्तार तिस पवे ताय कंकार अनक लखे न जाय तिस पवे तिस लय मिलाए कव निकट कवन कही दूरा पे आपा पर पूर अंतर गज साब जनाए नानक तिजना बजाय सर्व भूता वरतारा सर्व नैना पे खनारा सगल समग्री जा का तना अपन दसा भी सुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया सब के माता लपत रह जुग कहना सो आपे क्या है आगे आवे आगे जाए नान जा पावे तन लै सुमाए से हो सुना ही बुरा उरे कहो किने काछ करा आप ला कर तू त्यदन की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत अपने संग राजता की गर्तन कहीं ना दाए दूसरो ता सोच जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नानी के जान जो जाने ते सदा सुख हो आम लाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आमन कह है स्वाव जन कह संग

ब्रह्मनिकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मनंतर की उतर चंद आसन त्याग तरंग संजना के तुर मन मंग आप छोड़ बिन्ती करहु सा संग अग्न सागर तरह हरतन के पर लो पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग पद परमानंद नरक निवारो दारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित बहु नारायण एक रूप जंके रंग।

सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भंती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता आपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह शाह पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवड़ वड्डा।

बाज सनात राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करों गुरपास हम कीरे किरम सतगुर।

तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबो, आप हाथ दय मोहे बचाबो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिया, सब बैरण को आज संगरिया। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें

संबत 17 सहस्रपणज्ञा आर्द्रशास्मतीन कहज्ञा पाद्रव सुधी अष्टमी रववारा तीरस्तद्रव ग्रां सुदार एत श्री चरित्रो पखियार त्रया चरित्रे मंत्री पूप संभाते 405 चरित्र समापतम सत शुभम सत अभजो दोहरा दास जान पर दास जान कर दास पर

जल ते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखे समाहे दोहरा। जब आए सब प्रभु को पयो, जन्म तरा जगाए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूं कहत सुनाए, कब बाच दोहरा। ठाट पयो मैं जोर कर, भजन कहाँ सिरन आए। पंथ चला तब जगत मैं, जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान कहो नित।

कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सभा बहुभेद कहा हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुम्हारी कर मैं ना कहे

सिखानु सिखी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, विसाह दान, प्रसाद दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शने शनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवा, मत उची मत पादे राखे आप, अकाल पुरख वाहिगुरु आपने पंथ दे सदा सहाई दतार दियो। श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामा दे खुले दर्शन दीदार, सेवा संभाल दा दान, प्यारे खालसा जी नूं बख्शो।

अनग माया रंग तिख नाम बुझावे हर का नाम जपत आगावे जे मार्ग ए जात अकेला ते हर नाम संग होत सुहिला।

का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जासुन रसन मखानी। सगल थान ते उत्तम थान, नानक जेकट वसै हर नाम।

साधक संघ दृढ़ सब धर्म साधक संघ केवल पार ब्रह्म साधक संघ पाए ला प्रधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संघ सब गुरु उदार सा संघ सा जनमीत गुणम निस्तार साधु कै संघ सो धन पावे जिस

साध सुंदर साय साधक संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाव साधक संग ना मंदे बिसराय साध संग सार पर निश तराय साधक संग लगे ब्रा बीठा साधु गय संग गड़ गड़ डीठा साध संग भया गया गारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध बैठे संजोग साध की महिमा वेद ना जाने जिता सुने तेता बखियाने।

ब्रह्म ज्ञानी का तीर्थ एक जो वसुधा कहू खोते कहू चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक जो पाप का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैला लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मानो है प्रकाश जैसे धर्म आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के डाये महान ब्रह्म ज्ञानी उच्च से उच्चा मन अपने सबते नीचा।

ब्रह्मज्ञानी की सब उपर भया ब्रह्मज्ञानी ते काश बुरा ना भया ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्टमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान

ज्ञानिका बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाग्य है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में शर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा खेर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाले, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान, ब्रह्म ज्ञानी का अंतरा पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवा नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता,

कबहू नृत्य करय बपात, कबहू सोए रहय दिन रात, कबू महाक्रोध बिखराल, कबू सर्व की हो त्रवाल, कबू होय बह बड़ राजा, कबू भिखारी निज का साजा, कबहू अब कीर्त में आवय, कबहू भला भला कहावय, ज्यो प्रभु राखे तिब ही रह गुर प्रसाद नानक सच कहाय, कबहू होय पंडित करे बखियान, कबहू मोन तारी लावे ध्यान, कबहू

राष्ट्रपति संत का दुखन आर जागट है, संत का दुखन जमते नहीं छुटाए, संत का दुखन सुख सब जाए, संत का दुखन नरक में पाए, संत का दुखन मत मलिन, संत का दुखन सो बात हीन, संत के हते को रखाए न कोई, संत का दुखन थान भ्रष्ट हुए।

विघ्न लागे कोई। वो सद मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सद व्यवहार। निर्मल रसन अमृत पियो, सदा सुहिला कर ले जियो। नैनो बेग ठाकुर का रंग सा संग, बिनसे सब संग। चरण चलो मारो को बिंद मिटे पाप, जपिए हर बिंद। कर हर कर्म सर्वनर कथर, दुर्गे नानक भूजल मथा। बटभागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से तलवंत करे संसार।

स्वप्रसन्नष्टपदि अविनाशी ब्रह्मन् मे रागमानुकेतुं प्रीत्या तस्ते परानायक शुकोहे सर्वनिरन्तर एकोऽसौ अपे भिन्नायापे दाना गैर्गभीर्गीर्सुजन्ना।

दुख रोग बिन से वह भरम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुख मनी।

कुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तबले उपर के ता पार धरती होर परै होर होर तिस्ते पार तले कमन जोर

असंख मूर्ख अंध कुहर असंख चोर राम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाव कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक।

सहस अठारह कहन कते बासलो एक दात लेखा होए ता लिखी है लेखै होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला है ती सुरत न पाईया।

गावह सिद्ध समाधि अंदर। गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न खीसर जुग जुग वेदा नाले। गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ प्याले गावन रत्न उपाय तेरे अड़सर तीर्थ नाले।

तिथे करिय सुर तुम आत्मन बुद्ध, तिथे करिय सुरा सदा की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर ना कोई होर। तिथे जोध महा

पीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रजहन प्रयाशंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेहवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे सर्व

आचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेस हैं भुजंग प्रयास छंद अगाधे बाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वाने संभस्ति निधाने।

सर्वपांजने आदरूपे सुत आगहीने अपांगनाथ मेक पुरखे अपार सर्वलायक सर्वकायक सर्वगुप्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वतेन पेक सर्वसाहत्र न जान ही जेह रूप रांगर रेख परम वेद प्राण जाग कह नेत पाखत नेत कोड़ सिमृत प्राण साहत्र नाभि बहुचित मद पार शांत वय प्रसाद गुण गान उदार महिमा पार आसने अपांग उपमा।

निर्भय काम आत्मदुत प्रत्यानमित गाते अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रनाड अंडड भाडय त्याचरी शांत वय प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरि अंग करि अंग निरनामे कामे भजहंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र काले चतर चक्र पाल

है कि सर्वत्र माने के सर्वत्र धान्य के सर्वत्र गावन के सर्वत्र पहावन के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो

पाते निरसाकन शरीक है, अमितो अमीक है, सदैवं प्रभा है, अजय है, अजा है, भगवती छंद तव प्रसाद के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, हमेशल सलाम है, समातल कलाम है,

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हार संग मीत संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तेस मोहन लाल प्यारे ओं फिरो खोजंतिया तेस दास प्यारे सिर धरी उतारे

जीवन ही पानी है। जिवें मच्छी का जीवन पानी है, मेरा जीवन वाहगुरु जी तुसी हो, तुहाडे दीदार ने, तुहाडी याद है, इसलिए कृपा करो, तरस करो। चात्रक जिवें ते संतियां जिवें मच्छी पानी बिना तड़फ दिए, जिवें बबिया शवांति बूंद तो बिना तड़फदा है, भावें जिन्ना मर्जी समुद्र च पानी होवे। कहिंदे ने कैथेफिक सागर कई थावां तो 5 मील डूंगा है, ऐदा खड़ा 5 मील, ओनू उथे लै जाओ आवे किन्ना पानी है, रो ना। वो कहिंदा मेरे किसे काम दा नहीं, मेरे तालू च बूंद डिगनी चाहीदी सीधी, जिहड़ी सीधी मेरे हलकता नहीं, मेरे स्टमक च चली जाए, मेरे पेट च चली जाए, मेरी प्यास ओहदे नाल बुझदी, इस खारे पानी नाल मेरी प्यास नहीं बुझदी। जिवें ओ चात्रक प्रियो प्रियो करके शवांति बूंद दी मंग करदा है, इस तरह मेरे मेरा मन लीन है। जन नानक गुर पूरा पाया, सगली तिखा बुझंती आ। जदों पूरा गुरु मिल पवे ते ओ ए प्यास बुझा सकदा है, ओ जीवात्मा नू परमात्मा नाल मिला के ते ओदी ए तड़फ जिहड़ी ए ओनू शांत कर सकदा है। यार वे प्रिय हबे सखिया मुँह कही ना जेहिया, जदों इस पासे तुरिए ना बाणी पढ़न सिमरन करन सेवा करन, उदों हंकार नू नेड़े ना फटकन दईए। क्यों? क्योंकि इत्थे गां तो गां रूहां पईआं ने, जिन्हां वास्ते अजे असी जम्मे भी नहीं हुंदे। संगत विच ना कदी कदी बड़ी उच्ची अवस्था वालियां रूहां भी बैठियां हुंदियां ने, ते कई बिल्कुल प्रायमरी अवस्था वाले भी हुंदे ने। यार आया है ते मैं बेनती कर दिया, जेड़ा इश्क हकीकी दी जदों गल आवेगी ना गुरु ग्रंथ साहिब च गुरमुखो, ये अहंकार नहीं भी मैनू बड़ा आउंदा है, उंज ता उम्र ये करदे रहे हैं सेवा, पढ़दे पढ़ांदे रहे हैं, ता जिन्ना को एक्सपीरियंस हो गया मैं सांझा। जदों भी इश्क हकीकी दी गल होवे, जीवात्मा परमात्मा जीवात्मा गुरु दे प्यार दी गल होवे, गुरबाणी च यार आवेगा यये नाल, यार जदों ओ यार आवे ना जेड़े इश्क मजाजी आले ने विषय विकारां वाले, यये दा जज्जा बन जाएगा। तुसी कहोगे किथे लिखिया, चोरां जारां तै कूड़ियारां, उत्थे जज्जा आ जाएगा। ये निके निके नुक्ते ने, मतलब बजिद ना होइए भी इदां नहीं हुंदा जी, जे इदां समझ लईए ते फिर जदों पाठ करांगे आनंद बड़ा हुंदा है। ग्रैमर नूं थोड़ा जिहा समझ लईए, खुद ब खुद गुंजलां खुलदियां जांदियां ने, उह गुंजलां खुलदियां जांदियां ने, अंदरों रस आउंदा जांदा। गावे को विद्या विखम विचार वाली अवस्था बन जांदी, उह विखम गल्लां उह कंप्लीकेटड गल्लां सौखियां हुंदियां जांदियां, नाल दी नाल रस आउंदा जांदा, रस आउंदा जांदा, रस आउंदा जांदा, गुंजलां खुलदियां जांदियां ने। सिखना चाहीदा हर्ज की है। यार वे प्रिय हबे सखियां, उस प्यारे दियां सारियां सत्संग सहेली सखियां ने, मूह कही ना जेहिया, मेरे नालों सारियां ही चंगियां ने, इंज सीधे अर्थ कर लो। मेरे वर्गा गया गुजरिया इत्थे कोई भी नहीं गा, मेरे नालों सारे ही चंगे ने, मेरे नालों सारियां दी अवस्था उच्ची है। यार वे हिक डू हिक चाड़े, इत्थे जड़ा हिक है ना हाहे नाल, ए असल च एक ईड़ी नाल, पहला जड़ा हिक है हाहे नू शियारी कक्का हिक हिक मैंने एक ओदे अर्थ ने एक, जिन्हू मैथमेटिक्स वन कहिंदे हो, बड़े ध्यान नाल बेनती सुनना। हिक डू हिक चाड़े, हुण जड़ा दूजा हिक है ओदे कक्के नू शियारी है। जदों भी गुरबाणी च एक ईड़ी नू शियारी कक्के नू भी शियारी लग जाए, उचारण एक होना है, अर्थ बेअंत होने ने। तुसी कहोगे किथे लिखिया, कढ के हुणे वेख लो। एक वणखंड बैसै जाहे साधना देवही, एक पाला कक्कर भन शीतल जल। हुण जिन्नी वारी उत्थे एक आया है अर्थ बेअंत ने, कई कई जंगलां च

वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासी होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर

0: कदे न छो टाली दत्ता मंगना दर कदे न छो
1: नानक
0: मंतन चाओ एहो नित प्रभु को लोड नानक मंतन चाओ एहो नित प्रभु को लोड
1: सतगुर आयो शरण तुम्हार मिले सुख नाम हर शुभ चिंता लाए हमारे धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सन तू ही नरंकार तू सदा सलामत नरंकार तू ठाकुर उच्च भगवान नानक की प्राबीन
0: अपनी भक्ति लाए
1: मांगो दान ठाकुर
0: नाम
1: धन धन मेरे प्यारे गुरु
0: नानक देव साहिब
1: तू ही नरंकार तू सदा सलामत नरंकार तू ठाकुर उच्च भगवान नानक की बरा बेनती
0: अपनी भक्ति लाए
1: मांगो दान ठाकुर नाम धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज कोट कोट प्रणाम भुल चक माफ तेरे चरण कमला पास बहुत बहुत धन्यवाद नानक नाम चढ़दी कलो तेरे भाणे समर्थापन वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल
2: सतनाम श्री वाहेगुरु जीओ तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे सतनाम श्री वाहेगुरु जीओ सजन सच्चा पातशाह सिरसा दे साहू जिस पास बैठिया सोही है

हर हर तिनके होमे रोग गए रहाओ ब्रह्मा विष्ण महादेव त्रै गुण रोगी बिच होमे कार कमाई जिनकी ये तिसहे ना चित है बपुड़े हर गुरमुख सोजी पाई होमे रोग सब जगत व्यापिया तिनको जन्म मरण दुख भारी गुर प्रसादी को बिरला छूटै तिस जन का हो बलिहारी जिन शिष्ट साजी

सक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड को सक्यो बारा खो खटे पौर आनंद गाय अष्टमाल कहु सक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संगेट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरसी हिरी लै भार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद भास कर आए चंद्र बे मंगलन सुहाय सरस बाणे वाहे बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा इष्ट पुत्र मैं कहे।

संतौ सब जगत पैरी पाए जी अर गुरै भाणा दी वडियाई तुर लिखया लेखर जाए जियो कह सुंदर सुनो संतौ सब जगत पैरी पाए जियो वाहिगुरु जी का खालसा।

दास जियो पिंड सब तेरी रा तुम मात पिता हम बारक तेरे कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते ऊचा पग सागल समग्री तुमरे सूतर तारी तुम ते हो एसो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लईं त्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नू सिमराऊं श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याईए जिस रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवे ताई सब थाई होए सहाय। दसवां बादशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। दसां बादशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान तरके बलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्हां नाम जपया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता सचारियां पैरां दी कमाई दा ध्यान तरके बल जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरिआं नाल चिरवाए सिखी सिदक किसां श्वासां संगन भाई तरह की कमाई का ध्यान तरके बलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान तरके बलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेता वै चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जी श्री साहिब जी सहाए। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहु दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन शनान चमकियां चंडे बुंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत का राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा संभालता दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। नमाणियां दी माण सतगुरु नताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट ने आसरियां दी आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ अरदास बेनती है आप जी दे अटल हुक्मां दी तावील करदिआं दर करदे सेवक सरदार रणजीत सिंह जी पदम जिहा चिरी लिखिआ तिहा हुक्म कुमाए कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए जी मावक अनुसार। सेवकां नूं आप जी ने जितनी आरजा बख्शिश कीती सी संसारक यात्रा संपूर्ण करदिआं होइआं परलोक प्याना कर गए सन उन्हां दी रूह दी शांति लई समूह परिवार वल्लों आप जी दे चरणां दा ओट आसरा लै के सहज पाठ आरंभ करवाए सन।

करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मै था पियो थाप दा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिसे आप बुझाए सो बुझसी